दुनिया के नक्शे पर न जाने कितने मुल्क उभरे हैं और वक्त की रेत में दबकर पना हो गए। मगर मैं आज भी जिंदा हूं,

0: 96 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। और दोस्तों अपना रेडियो सेट छोड़कर ना जाइए, आपके साथ आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना जल्द करेंगे आप सभी की फरमाइशों को पूरा। बने रहे हमारे साथ रेडियो डीएस पर।
1: गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। फिलहाल इस वक्त आप मेरे साथ ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: दोस्तों सुबह के 10 बज चुके हैं, लेकर हाजिर रहूंगा थोड़ी देर में आपका मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश। तो दोस्तों आरंभ करते हैं आपका मनपसंद फेवरेट कार्यक्रम हेलो फरमाइश। और फरमाइश से पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त वह ऐतिहासिक दिन है जब हमारा देश सदियों की गुलामियों की बेड़ियों को तोड़कर स्वतंत्र हुआ है। आइए उन तमाम अमर शहीदों को नमन करें जिनके त्याग और बलिदान की बदौलत आज हम खुली हवा में खुले वातावरण में सांस ले रहे हैं। जय हिंद।

0: हेलो हेलो
1: हेलो।
0: सर नमस्ते। अच्छा
1: नमस्ते भाई, चौधरी याद कर रहा हूँ। आवे जी
0: हेलो। हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: शहनाज।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?

0: नाम रूपचंद गोयल, जिला बाड़मेर, राजस्थान सर।
1: रूपचंद जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं
0: आज सर? स्वतंत्रता दिवस पर सबसे पहले जो रेडियो डीएस परिवार के जितने भी सदस्य हैं, जो भी श्रोतागण हैं, उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आपको भी आपके परिवार जन मित्र जनों को सर बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: आज सुनना है परदेश पिक्चर का आई लव माय इंडिया।
1: बिल्कुल सुना रहे सर आपकी फरमाइश का बेहतरीन गाना रेडियो डीएस पर खुल के। धन्यवाद।
0: थैंक यू।

0: नाम बाबू खान है।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं बाबू खान जी?
0: गंगापुर से।
1: बताइए सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
0: है प्रीत जहाँ की रीत सदा।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का सॉन्ग रेडियो डीएस में। कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: नाम बताएं सर।
0: अंकित मीना।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर से।
1: बताएं सर, गाना बताएं।
0: झूल।
1: बिल्कुल सुना रहे।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। गंगापुर

इस वक्त मेरे साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो DS89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो
3: हेलो,
2: नाम बताएं सर।
3: रफीक खान लोग से।
2: रफीक जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
3: माँ तुझे सलाम।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का गाना।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: जयशीला सैनी।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ जी,
0: लाल चोर से।
1: बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस पे? आपकी आवाज कट के आ रही है मैडम।
0: तिरंगा सॉन्ग।
1: तिरंगा सॉन्ग? ये गाना रेडियो डीएस में कट किया। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: वेलकम।

0: हेलो,
1: हेलो
0: नाम बताएं सर।
1: रफीक,
0: हेलो
2: नमस्कार।
0: सर नमस्ते, गाना बताएं। चलो
2: देशभक्ति सुना दो कोई बढ़िया सा।
0: आपका परिचय भी बता दो, नाम बता दो, कहाँ से बात कर रहे हैं।
2: शहजाद खान पुराने इंडिया में।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश का देशभक्ति गाना।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशंसा अग्रवाल, 9th क्लास। रिसेंटली मैंने प्रेस साइंस ओलंपियाड में 6th जोनल रैंक प्राप्त की है। मैं डीएस साइंस एकेडमी में 6th क्लास से प्री फाउंडेशन में हूँ। डीएस में आने से पहले फाउंडेशन क्या होता है उससे मैं बिल्कुल ही अनजान थी। यूँ तो बहुत सारे संस्थान फाउंडेशन पढ़ाने का दावा करते हैं, लेकिन जब वहाँ के टेस्ट पेपर्स और मटेरियल की तुलना की जाती है तो वह डीएस के मटेरियल से बहुत ही कम स्तर के प्रतीत होते हैं। डीएस में

0: परिजनों को ढेर सारी शुभकामनाएं रेडियो डीएस परिवार की तरफ से।
1: आज का गीत सर भारत माँ के नाम है
0: जी, बताएं।
1: माँ का मन ममता का मंदिर,
0: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी। हेलो
2: हेलो, नमस्ते।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: हाँ का मन ममता का।
3: हेलो
4: नमस्ते, नाम बताएं।
3: कविता गुजर।
4: कहाँ से बात कर रहे हैं गुजर जी?
3: गंगापुर सिटी।
4: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
3: गाना है सर मेरे देश की धरती सोना मेरे।
4: बिल्कुल गुजर जी, सुना रहे हैं आपको। आपकी फरमाइश पर बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में सुन के बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: नमस्ते सर
0: जी। नमस्ते, नाम बताएं।
1: धंडीराम गिदर बोल रहा हूँ सर।
0: धंडीराम गिदर का गांव से बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
1: रीत रीत
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश पे गाना।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS

0: बताइए सर।
1: मेरा नाम सत्यनारायण गुप्ता है।
0: गुप्ता जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगा प्रसिद्धि से।
0: बताइए सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: पोखरण जी की आरती
0: है जी,
1: गोवर्धन जी की आरती।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपका, आपकी फरमाइश का ये आप

0: हेलो,
1: नाम बताइए सर।
0: सर मोस्ट कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: इनका पूछी थी,
0: बताइए सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: अरे वतन मेरे आवाज रहे।

0: कि यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो नमस्ते मैम।
3: नमस्ते सर, नाम बताओ।
2: नितिन गोठवाल बोल रहा हूँ गंगापुर सिटी से।
3: गोठवाल जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: आपके हिसाब से चला दो आज।
3: बिल्कुल,
2: स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त, आपको हार्दिक बधाई हो।
3: आपको भी, आपके परिवारजन मित्र जनों को सभी को
2: धन्यवाद सर।
3: ओके वेलकम। सुना रहे सर आपकी फरमाइश से बेहतरीन सा देशभक्ति गीत।

0: हेलो सर जी, डीएस रेडियो गंगापुर राजस्थान जी।
1: यस सर, नाम बताएं आपका।
0: हाँ जी सर जी, मैं पिंड मौड़कोर से डिस्ट्रिक्ट बठिंडा पंजाब से बोलता हूँ, जगजीत मट्टू जी।
1: मट्टू जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डी।
0: सर जी पहला था जी, हमारी फैमिली वालों जी आप नू जी 15 अगस्त दिया लख लख मुबारक बधाइयां जी। ते जी
1: आपको
0: अपने
1: भी, आपके परिवार और समस्त सुनने वाले प्रदेशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं सर।
0: हाँ जी फौजी वीरां नू भी असीं सलाम कहने जी, ठीक है ना जी।
1: जी सैल्यूट, उनको तो उनकी वजह से आज हम सुरक्षित है सर।
0: क्या बात है सर जी, मेरा देश महान जी। धन्यवाद
1: जी
0: जी, सारे श्रोतियों का भी धन्यवाद करता जी। एक फिल्म है जी, भैन लता जी ने गाया जी, मैं सर जी फिल्म का नाम तो भूल गया जी, हूँ गीत बता देता हूँ जी।
1: गीत बता दो सर।
0: हाँ जी, ऐ मेरे वतन के लोगो
1: जरा
0: गाओगा
1: याद करो कुर्बानी। बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का
0: सर जी,
1: बैठ
0: अखा दे पानी आ जाए जदों सर जी, ये भैन लता जी ने गाया सी ना जी, चाचा नेहरू जी अखा च पानी आ गया सी जी, ये गीत
1: जी।
0: बहुत चंगा जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सुना रहे हैं
0: ठीक
1: सर
0: है
1: आपकी
0: सर,
1: फरमाइश के गाने।
0: ठीक है सर जी, सत श्री अकाल।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो
3: हेलो सर। राधे राधे।
2: राधे राधे जी, नाम बताएं आपका।
3: मेरा नाम समता जादौन है, वार्ड कला से बोल रही हूँ सर।
2: समता जादौन जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से।
3: मुझको गाना सुनना है देशभक्ति, जहाँ डाल डाल परेशानी की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम आपकी फरमाइश का ये गाना।

0: हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशंसा अग्रवाल, 9th क्लास। रिसेंटली मैंने क्रस साइंस ओलंपियाड में 6th जोनल रैंक प्राप्त की है। मैं डीएस साइंस एकेडमी में 6th क्लास से प्री फाउंडेशन में हूँ। डीएस में आने से पहले फाउंडेशन क्या होता है उससे मैं बिल्कुल ही अनजान थी। यूँ तो बहुत सारे संस्थान फाउंडेशन पढ़ाने का दावा करते हैं, लेकिन जब वहाँ के टेस्ट पेपर्स और मटेरियल की तुलना की जाती है तो वह डीएस के मटेरियल से बहुत ही कम स्तर के प्रतीत होते हैं। डीएस में हमें राष्ट्रीय साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी ओलंपियाड्स की तैयारी करवाई जाती है, इसलिए डीएस में पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि यदि प्री फाउंडेशन लेना हो तो पूर्वी राजस्थान में डीएस एकमात्र संस्थान है जो इस कसौटी पर खरा उतरा है। आइए IIT और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए डीएस से जुड़कर अपने बेहतर भविष्य को सुरक्षित कीजिए।
1: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइन स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहेंसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड

0: एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट, लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
2: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
2: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
4: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
5: हेलो सर, राधे राधे।
6: राधे राधे।
5: चने की चिड़िया कर।
7: हेलो,
6: नाम बताए सर।
7: हेलो
6: सर, नाम बताएं आपका।
7: नाम मेरा सत्यम प्रजापत।
6: कहाँ से बात कर रहे हैं प्रजापत जी?
7: नसिया कॉलोनी।
6: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
7: धुरंधर मूवी का कोई सा गाना भी चला दो।
6: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश का ही गाना।

0: हेलो।
1: जी नाम बताएं सर। रूपचंद
0: नाम रूपचंद गोयल, जिला बाड़मेर, राजस्थान। सर
1: जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
0: आज सर स्वतंत्रता दिवस पर सबसे पहले जो रेडियो डीएस परिवार के जितने भी सदस्य हैं, जो भी श्रोतागण हैं, उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आपको भी आपके परिवार जन मित्र जनों को सर बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
0: आज सुना है परदेश पिक्चर का आई लव माई इंडिया।
1: बिल्कुल सुना रहे सर आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस पर खुल के धन्यवाद।
0: थैंक यू।

0: बाबू खान है।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं बाबू खान जी?
0: गंगापुर से।
1: बताइए सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
0: है प्रीत जहाँ की रीत सदा।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का सॉन्ग रेडियो डीएस में कॉल किया। बहुत बहुत जी, नाम बताए?
2: गुलशन।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं गुलशन जी?
2: गंगापुर सिटी।
1: बताए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस में?
2: सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं गुलशन जी आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो,
3: नाम बताएं।
2: सेनाज।
3: सेनाज जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: गंगापुर सिटी सिंधी कॉलोनी।
3: बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
2: मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन।
3: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम, आपकी फरमाइश का सॉन्ग रेडियो डीएस को कॉल किया, धन्यवाद।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: हेलो
2: हेलो सर जी, नमस्कार जी।
1: नमस्ते सर, नाम बताएं।
2: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलूखेड़ा से।
1: गाना बताएं सर।
2: फिल्म का नाम है बॉर्डर संदेश आते हैं।
1: सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: नमस्ते।
1: नमस्ते, नाम बताएं आपका।
0: भाई
1: जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: बिल्कुल कॉलोनी से।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: सर आज मेरी बहन का बर्थडे है, अश्विन मानव है
1: जी।
0: और आज राम के मेरा विधायक उनका भी जन्मदिन है, उनको भी जन्मदिन की बहुत कामना।
1: जी बिल्कुल,
0: बर्थडे सॉन्ग लगा रहे हैं सर।
1: बिल्कुल लगा रहे हैं, आपके फोटो बर्थडे सॉन्ग।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। 89.6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। 89.6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का में आपका रेडियो।

0: इनका सरताज है।
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशंसा अग्रवाल, 9th क्लास। रिसेंटली मैंने क्रेस साइंस ओलंपियाड में 6th जोनल रैंक प्राप्त की है। मैं डीएस साइंस एकेडमी में 6th क्लास से प्री फाउंडेशन में हूँ। डीएस में आने से पहले फाउंडेशन क्या होता है उससे मैं बिल्कुल ही अनजान थी। यूँ तो बहुत सारे संस्थान फाउंडेशन पढ़ाने का दावा करते हैं, लेकिन जब वहाँ के टेस्ट पेपर्स और मटेरियल की तुलना की जाती है तो वह डीएस के मटेरियल से बहुत ही कम स्तर के प्रतीत होते हैं। डीएस में हमें राष्ट्रीय साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी ओलंपियाड्स की तैयारी करवाई जाती है, इसलिए डीएस में पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि यदि प्री फाउंडेशन लेना हो तो पूर्वी राजस्थान में डीएस एकमात्र संस्थान है जो इस कसौटी पर खरा उतरा है। आइए आईआईटी और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए डीएस से जुड़कर अपने बेहतर भविष्य को सुरक्षित कीजिए।
3: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडीइंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइन स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस।
4: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
4: कोमल।
0: कोमल जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
4: गंगापुर सिटी।
0: बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
4: सनम मेरा हिंदुस्तान।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम आपकी।

0: हेलो
1: हेलो,
0: नाम बताएं सर।
1: मानविता।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: सिंगापुर से।
0: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम।
2: हेलो जी, नाम क्या?
3: चंद्र प्रकाश।
2: कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: गंगापुर सिटी से।
2: गाना बताएं सर।
3: किताब
2: हाँ जी।

हाँ बताए सर, लिखूं तेरे बारे सारी दुनिया के, कहाँ से बात कर रहे हैं? लिखूं तेरे बारे सारी दुनिया ने, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? बिल्कुल सुना रहे हैं मैम, आपकी सरवाइव करेगा।

0: हेलो, नाम बताएं आपका। कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर से।
0: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मंद मंद।
0: हाँ जी,
1: मंद मंद।
0: मंद मंद रखिया।
1: हाँ।

नीतू जट नू पसंद होगी गर्मी च ठंड होगी मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी तिरछी नजर तेरी आशकाली पंग होगी।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: गुड आफ्टरनून दोस्तों बग तो चुका है, एक बज चुके हैं इस वक्त। आप मेरे साथ टोन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त हर्जे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम नहे तराने 89.6 रेडियो डीएस पर।

एक फौजी के रुतबे से बड़ा कोई और रुतबा नहीं, वर्दी की शान से बड़ी कोई और शान नहीं, और अपने देश से बड़ा कोई धर्म नहीं।

0: तुम प्लीज इस रिश्ते के लिए मना कर दो। मैंने किसी और से वादा किया है। आई एम सॉरी।
1: ठीक है। पर मुझे बस एक शाम दे दो। फिर भी अगर तुम्हारा फैसला ना बदले तो आई प्रॉमिस मैं इस रिश्ते को मना कर दूंगा।
0: वो तुम समझ नहीं रहे हो।
1: प्लीज एक शाम।
0: अच्छा ठीक है, कल शाम 4 बजे, पर सिर्फ 1 घंटे के लिए।

0: अब मुझे चलना चाहिए, बाय।
1: पर सुनो, मेरा ब्रेसलेट।
0: ओह
1: वो नहीं,

0: दोस्तों बैक टू बैक गानों का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं और लेकर चलते हैं आपके मनपसंद कार्यक्रम राजस्थानी गीतों में। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: दोस्तों अभी आपने सुना फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। दोस्तों थोड़ी देर में लेकर हाजिर रहेंगे आपका मनपसंद फेवरेट कार्यक्रम भजन संध्या। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

राहे मोहब्बत में कुछ कड़ियां ऐसी होती है जो जुड़ने पर ही समझ में आती हैं। मुझे तुम्हारा आज भी इंतजार है और मुझे यकीन है कि तुम जरूर आओगी।

0: हर 6 महीने बाद बूटे बदलने वाला जब करना पऊ आपां नूं।
1: ओह तां करना पऊगा जी, कुछ हुंदे सदा बहार, जिहड़े खड़ गए तां खड़ गए, कुछ मौसम तरह बदल जांदे आ।

मैं कुछ भी कर लूं, तुम कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करना चाहती, और तुम कुछ भी कर लो, मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता।

0: तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो?
1: अब हम नहीं मिल सकते।
2: नहीं मिल सकते।
3: I'm so sorry, but we have to end this.
0: क्यों?
3: You know the reason.

क्षमा बनकर जल रहे हैं हमारी धड़कनों में तुम्हारी मोहब्बत के परवाने। तुम जब हमें उन नजरों से देखते हो, दिल की कलम से हम लिखने लग जाते हैं आशिकी के कई अफसाने।

0: हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी।
1: रिकॉर्डिंग्स लाइन अप है, शोज ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, कौन करेगा ये सब? पता लगाओ कि कहाँ गए ये दोनों।
2: जी सर, पता लगा रहा हूँ।

लिया।